नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: becoming the president of Myanmar.
1: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
3: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच शाम

0: 7 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बिलोनिया श्रोता বন্ধুরা এখন শুনবেন ছায়াগীতি অনুষ্ঠান। শুনবেন বিভিন্ন বাংলা ছবির গান। আজ শুনবেন বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে বিভিন্ন বাংলা ছবির গান। বন্ধুরা, যাদের হৃদয় আছে তারাই ভালোবাসতে জানে। তবে এই ভালোবাসা সুমধুর না হয়ে যদি বিকৃতি হয়ে যায়, তাহলে জীবনের দুঃখ দুর্দশার আর শেষ থাকে না। তাই সবসময় ভালোবাসাটা সু হওয়াটাই ভালো। শুনব আরাধনা ছবির গান। গানটি লিখেছেন গৌরী প্রসন্ন মজুমদার এবং সুরকার সচিন দেববর্মন। গানটি শুনবেন কিশোর কুমার এবং লতা মঙ্গেশকরের দ্বৈত কণ্ঠে।

0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में नवीनतम परिवर्तन करना है और अपात्र नामों को हटाकर सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कल आंध्र प्रदेश के वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन क्षेत्रों की विभिन्न पहलों और विकास पहलुओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में वस्त्र मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड और संबद्ध विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री सिंह ने वस्त्र और रेशम उत्पादन क्षेत्रों की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार में गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोवा संस्कृति और विरासत का भव्य संगम है जो दुनिया को भारतीय आतिथ्य सत्कार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बिलोनिया श्रोता बंधुरा এখন শুনবেন हिंदी छुपड़ी গানের অনুষ্ঠান গানে গানে। বন্ধুরা 1991 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সজন ছায়াছবি বলিউডের অন্যতম আইকনিক ও সুপারহিট রোমান্টিক চলচ্চিত্র ত্রিভুজ প্রেমের গল্প ও শ্রুতিমধুর গানের জন্য ছবিটি আজও দর্শকদের হৃদয়ে বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। শুনব প্রথম গানটি এসপি বালাসুব্রমণিয়াম এবং অলকে অগ্নিকের কণ্ঠে।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं ल्हायान 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। राष्ट्रपति के रूप में ऊ मिन आउं ल्हायान की यह पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव वसीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस कोरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपने समृद्ध

0: सांस्कृतिक विरासत और शानदार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नए नेता के चुने जाने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। ओडिशा में आज मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी। और खेलों में हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बिलोनिया এখন শুনবেন দেশাত্মবোধক গান দেশবন্ধন অনুষ্ঠানে শুনবেন বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে।

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रम दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।

0: এতক্ষণ নিবেদিত হলো বচন, নিবেদন করলেন অনুপ জলোটা। আকাশবাণী বিলোনিয়া। এখন শুনবেন প্রথমে দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ, এবং এরপরে শুনবেন আকাশবাণী উজ্জয়িনীর কাকবরক অনুষ্ঠান।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে লভলিন নিগম। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आओ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोम कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये अत्यंत सम्मान की बात है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटन्स आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना में लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हाफार दुला सारमानु गेदे दायकुंनि कुवा तैकरै नुगेदे जाब्रा मरांजाक मुसुक सेचाया आबुनो देनों जोंनो बेदक सलाइमु नांनाय दफनि बागै बसं कमर लांथों थाप्ला जावै मुखचिलि किनारतै मुक्तै यरिमा माग्नाता थांथों हकतै जावै गोलांजाक मुकुमु फन्दुक फन्दुक अब आहायनदा फनखना सातं गोरै वातै नांगिया सिन्जो माहान्या सुन्दग दाजाग्रक नकनि अकरा दफानि जाकरा होनै सुरानि याफारका नन असुन्दगनि आहाय हिनिदा नों जोंनो मकल थाफला मकल खापुङै थकाय थकायै बेबाग मुकुमु फालै जानाय बुमुक पेर साजा गोताल बसं दरुग दरुग दारक दङ हसियार नरक हसियार आव बेलेखेन कक मरक एबा खेबा बेलेखेन कक पुतुक बाख्याय बिसिंनि कक बख्रि बेखलजाक कक रकब ताखुक अर्जिननि सैजाक अ कक लब बेलेखेन खरातखातेयै बिनि अरक गोबांमा हुइजाक कक थाय रक दङ व चिनि सैकरों रक हिन्दि जेसा दफानि फान हिन्दि जेसा बसंनि फान हिन्दि चिनि सैकरों बा दफा हदानि सैकरों रंनि बिसिं तैसे बर' रग्न खा बाजारिगु एबा खेबा सिजारिगु आव बरंनि सैकंनि बोथैबायसे गोबांमा खा नांगिया आरो खा नांगै बंनि फान जुदाङै माथाङ असिमं रग्न नुगै एबा मा परिगै आव बिनि बोखा मुंसासक चर हाबजाक दंना बा मुंसासकनो तै बखात व दुनकजाक ओंखाना आबोनि बागै आसोखाय अमहाय कक कतुक बाय सैका बालाखेन हामबाय ताखुक अरजिनो निनि अ ककलबनि बागै निनि अ ककलब सैमुं सैजाक दंमानि बागैनो आं दिनि ताखुक ते बुहुक संनो खोनाय दंनाय रंनो खोनारि उइमानखा हेंखाय तरक तरकखाय सोङाबा हेखेन ककलब रक खोनालायानो हायनो हाय दाबुक ते तांसा खोनाबानो आबंखा ताखुक चातुदेव बर्मानि सैजाक आं साबु आबब तैमुक बिजाबनि न खलजाक गायसा ककलब आं ताबुक नरग्न सावै खेनारिबानो हादक दु कलक बासावै दंब नाहारे नुखरिया लुकु कुथुम बासावै दंब सिनिमु नायतुगै माया आं साब हायुं गोनांगै दाले दाल लामा गोनां मां जतनि दंग सिनिमु गोबां आनले साब सिनाय दं आं साब खरक्ति सावै बासाना नायब उक्लक बसकां लुकुनि खरां याचांनाय गोरै मां सामपिले गोरै बरकनि मोखां बोखानि मुचुंमा गोबां बाहाय ओंनाय मुखथां दाबुकनि जराव याक्षिया गोरा लुकु सेग्लायमा खरां लुकु गाहामनि बियाल आं साब आं साब आं साब आव चिनि अ कग्ल ब्रग्न

नों सालसा किफिलै आनो नायत्वगै फायानो आफुरु नों गोलांगै थांमा तियारि गोरान मुक्तिनि तैमुकबाय कुपुलों नों मान फायानो नों सालसा किफिलै आनो नायत्वगै फायानो आफुरु नों बाय गनै खुमपुइ कायलाइमा बारै मतमसाय तियारि गोलोगजाक नों मानफायानो नों सालसा किफिलै आनो नायत्वगै फायानो आफुरु नों आनो चिनि रांसाकनि गाइरिंनि गाइरिं किचिकनि नकल' समय तामतेरै जादुनि रोचाबै नन' बुफुरु खरां याजाक फायन' होनै नासिंजाक नों आन' मान फायानो आव बेलायखेनो खोनाथ'खाबिनि अकक्ल' फिसा रमान्टिक टाइप दाहाया दा फिसा बोखा नांजांनायजात आव सिख्ला जरा रग बा अबहाय रग कक थाय रग न खलजाक तें गहाया दा हांगे बेलायखेनो खोनाथ'थक निनि अ कक्लब जिनिता कक मिनाल हांगे जोङो हाखेनो दिसा थांलायफिनाय सिनि नेक्स्ट कक्लब बोखागो हाफनो चिनि जे जे जों नायदि चिनि हास्थायाव गोबां मा बरक दं माने जतनि माने चिनि हाखतरसे बरक बाय कप्लं हाया देबा कक हायसे चिनि दफा हदाव बा गोबां मा सिख्ला सास्लक सिख्ला बा चाखरा अखरा बेबाक दं फियाबा जतनि तो सरकारे बेरे ना सैनानि कक तो जों जतन साव रचाबैयो मानो खोनाखा हांखे बयनि नुखांखे सोरोंगैयो मानो फियाबा कक्लब ककतां एबा कथमा बसा कथमायुं थोंनुक अबहाय सैनानि रगबा कायसा जिनि रोबायसै कायसा जिनि साकनि एलेमसै हाया दा जों अबनो बयनो बागैबो माया बा बयबो चिन्थानिनि सेगैनाय माया अबहाय कक थायरक अंखरि कायसा कायसाखै जों खुमत्रां सप्तके सबै सैनानि जतनि पक्षे आबो सम्भबिया हाफनो चेष्टा खायखे एबा खेबा चायत' खेत' ओंया अबहाय मुंसा गोरै चायत' खाय बेबांनो ओङै मानो जायदंना सिनां हे तमं चिनि आजाय संगब एबा खेबा चिनि थिनांनि जे बारा बेकरेंनि जे आसाय संगता लगताबु सोरोंगि दंनाय बा ताबुक जे सै दंनाय रग बुंनो सैमु रंनो बरग अबहायखायनो सैरिउ माने थागियाव सैमां दं हांखे चिनि ब सालसा सैमुंनि बियाल दंला जों ताम साजाक सैमुंनि बियाल हेनि जों यासि सरजागौ चिनि कुंथाय बारा रग नंनि नांमानि सोग सैमुं गोरै नांमानि सोग नंनि सैगोरों गोरै अबहाय रखैनि जों असे उसु रग खोनाव बा जों अबहाय बायथांमोन जों फेस रखलायो फियाबा नंनि अबहाय सैमुं रग नंनि अबहाय चायतमुं रग नुगै वासा बायबा बर' बुफां कतर मांगै बोरैफां हाइखै बोरैफां साथैहाय ओंमानना बाहायादा तरक तरखा रतमै आस्ते आस्ते तरनाथ' जरा तर नांनाय जों अजरानो न जों माना सिंलायनाय हायादैबा हे जों तरक तरखै नासिंगै दंलायानो बुफुरु बोरैफांसो कतरोंगै आर साख्लमो जों लेलावै मानो आर नबारै गोजां जों सावै मानो हेंखै सैग्रों रंनो जों तेबो खाबा जायनानि नांगौ तै बंन' सैनानि बागै तैब' फान्दिनानि नांगौ हेंखै फायदि अजराव हायनोहाय ऐ तांसा रोसा बुंनि बिसिं थिख्लायै जिनि पान्दानो बोसखांत लाङानो ताबुकबो नरक बाय गोरोंगै दंनानै एबा खेबा कक्लबनि बिसिं उक्तै गोरोंगै दंनानै ते दामसा जरा दंख नरक ताते दामसा जरा रमै खोनावै मानानो आनि खुक्तै ताखुक्तै बुखुक संनि खाराथ' खाराथ' कक्लब रग न फायदि अजराव हायनोहाय तै दांसाल चामुं खोनालायानो नरक दस हायनो मानना फुं दिबरनि दामचिनै तामै सति थामचियो हिंखे नंनि रोचामुं रक्त' बै फाय दङ हायनि बागै ताबुक ताखकते बुहुक संनो कयनानि मोसुङो बाक्सा बाक्सा तं कल लख्लायि दंखा हिंखे ताबुक कल ख्लायफानो नंनि कक दुगत आं थाङैमानग्ला हायनि बागै आं ताबुक जे रोचामुं खोनानै दङ आबुनो नरक खेसा खोनालायदि खाखायाव नरक खाराथक जाबायना तामनि हिमालय आंबो

नलब सवै खासरांगिया मालायना मुचुंग मानि लाइजाक जरा रगो याक तलै नों बांग्रा बामसाय बेरायदो मानि निनि यासिमा रमै हिमानि लामानो नुगै खा बर्सावै थप थप गोलायो मुक्तयानि ओ हायुंगो नों गोरियानि लांमा बुकजाहाय ओंखाथिनि रुतुगै नायना बो आं नन' बोसकांसे बोकरांसे सगलैया आनि खमनि बोखोरै बारै कियखे सालसा जरिवै थांमाहाय ओ हायुंनि नोंबो गोमाखा आफा स्राबसा बायन' इमां हाय मकलि मुक्तै ताबुक ब यरमा थागिया निनि माया आनो रुवै गोलांमा मुकुमु पगनानि खाले शैलिया किफिले फासिदि नों तेवैसा आफा निनि नायथाव गरन्न नायै नायसिवानो तंखे अ आनि बुखा खना खना बायलाखेन' बोखा नांजाक मिनि बुफानाव लबै ब' खाथाङै बुखुक सुभद्र जे सैखिया आं निजे परितंफानसे साक्ति गारमाहाय ओङै मा थांखा बिनि अ कक्लबनो परिवै आव चिनि निनि आनि बेबाकनि लांमाबन' सालसाया सालसा अबहाय जरा अबहाय साल फायो जों आफ्राव तामखायना तामखाया जों पालमाया बरमाया आं मा थाङानो हाया दा ओमफ्राय दाबुखायनारिखौ बिनि अ कक्लबनो परि तै फानसे तामजानि बिनि त' असैमुंनि बिसिंथै बिनि बोखानि मुक्ति खालायमान' ब सावैखानारिखौ हायफानसे आं परि ततैसे बिनि अ कक्लबनो मकल किसा कचमाहाय ओङै मा फायखे हांगे बिनि बोखा बमथै ओंखाना अ कक्लब सैब्रु बेलाखेन' हामबाय निनि असैमुंर' अबा हायखेन' थैबो फुवारजाखथ' नों थेबो गाहामखौ सैमानानि ओंथं ओमफ्राय ताबुकजिनो स्टरिनि जरखगो तामखा दिबरनि बार'था तामै दुइ मिनिट ते एक सेकेन्ड एबा हेनि मानो दिबरनि दामचिनि तामै सतिनै मुखलि बा गेजतन न दिबर गाहामिया भारो अजराव आंनरनि बुखुक रिमा दिनि खाफैया खारे पान्दाव आं कमथिंनि दङ दैनक न' खोनारिहै दङ दुबै फैजा कक्लब रगन' खाख्लायो नरक आन' लगेरिहै दंना दिनि आन' खोनामानि बिसिंथै एबा आंनि पान्दान' टिउन खायमानि बिसिंथै गेते सति नै चिचार एबा 28 मिनिट दंख' नरकबाय खाफैया खारे पान्दाव गोरोङै दंनानि गे फायदि अजराव दैदांसा खोनामानो हायन'हाय आब' ओंखा दिनि सैनाय ओंखा सुप्राचिता देव बर्मा जिनि बुखुकजों न' ब' आव सिनसिग्रों सुप्राचिता देव बर्मा कक्लबनि मुं ओंखा साम्पारि हायन'हाय दैसे खुरसाबानो अबाबो तैमुख बिजाबनिनो नाहारजागो फादि बिनि अ साम्पारि कक्लबनो गिजाजों खोनालायानो दाङैमा दाङैफा रुवै गोलांमानि ककथायबाय बाक्सा रुवाय गोलांमानि दैसा बतखे बारै दंमानि मतमसाय बाहाय बिरै दंमानि मुंसा सोलायजाक मुं सोलायजाखा सिनि मुं गोमाखा दोरोग दोरोगखे बाहायबो गोमाखा यारों गोमाखा हासिंसा दंरोखा दैसा रानरोग थाइफलक दलाव साम्बारि बा ताबुक बर' बा थांखा नायतुक नायदे नायतुक नायदे तंखा बिनि गरन्न खरिव फायै थोङै थांला खरिव फायै थोंफायनाय आगि बर' गोमा बायखा जरानि तपसि खातुङै न' न' रुतुगै दंग' मुंकुरै सिनिमुं नायतुगै दंग'

0: फादि गजराव साबोतों ककदुक भागोसं थांलायनायानो ककदुक अजराव साबोतों हेलो
1: हेलो मेन पैसा करों फे कयां महारानी ना राजु
0: ए ए राजु
1: कोइ ना तो कोबरो नो खना खान के तापों के हिंदी टोकन नि खना नै तांग तांग
0: अ द ताखु राजु हिंगे आंनि नाबो अप्सन आ तनवान दो कारण को बमा तै रक ट्राइ खने बिला
1: अ
0: एंदो ताखुक राजु तरी रिका हे पर अप्सन आ तने निर सामुंग नांग नारा खाम न बुझिले ना अप्सन आ तने माने छामनि द ककरै हेलो हेलो इंदी पर कहा
2: इंदी पर कहा हम नो नंबर इसमें इतना है रोड
0: इन बोर्ड चामु
2: जन कुमार जमाती अन्य दिशा में उसको और अब नहीं चाहिए मानो चाहिए जा
0: उन तो किसा तिक्षा शॉटों ने शागरा दिया अंकह किसा खोरं काम खाना यंग तफनी
2: और अब नहीं चाहिए मानो चाहिए जा महिं
0: Borong ni kaya mana ibu ibu na? Sabu sini kamu Arun?
2: Apa?
0: Sini.
2: Sayan Kumar zaman dia.
0: Hah?
2: Sayan Kumar zaman dia.
0: Sayan Kumar na? Dah cang takuk ni nak urusan mana angcai tu mana itu urutu mana hambar. Jadi bor kah mai no hai, tapi kita studi ni jero kah kau tahu itu ngah di bor dam shata mui shot istri dia mukli tham cie juga, hingga jora tu teruk teruk. Baiklah itu ngah pun kebang kau ngatong hoba, hai di siapa tahu kita kenal ya na. Hello.
3: Hello.
0: Di bor kah?
3: Di bor kah mukho.
0: Ii.
3: Kita dorang zaman ni, jadu himalaya kisah ni kong ya mai kisah kenal mukung dah.
0: Shota gorn ya.
3: Angas telekung ni dinner pun dua musim.
0: Acha, dah kan hambai. Angke, tak aku telekung ni. Bo jadu himale kerana mungsa ka, kena layan abis ni aku ibu no nara kena faham siapa tu mungkin na. Hello.
3: Hello, bye.
0: Di berkah.
3: इधर का हम भाई आनो शिकला नौ पाने खनारे चिपटे हो भाई जोरा वो माने इन कोटो करने रों पांगो ऐसा ना ये शिनियां ये वो ऐसे तोने रोक दलच किन मार खनाये रे तो खनाने रोका माने मैं माँ नो गुला माने जान तो कि मोती शनि बारो शनि जी खनाने जो जान जे ये रे तो खनाने को मात से पाना आवे खोप Jadi tu kanan ini buri buri cerok ke bor kanan ni. Jadi awak mana, kami mana orang lelaki, dalam tu kanan pun tak kota.
0: Bor siapa?
3: Mana, bor cacing bukan tong terjah. Jadi tu orang rumah pun yang ke bawah kanan yang ke cacing bukan tong terjah. Pana, ni pana kanan di sini bor kanan ni. Pana, tu nana je kanan tong ni orang tu kanan ni. Mana
0: tadi? Acha acha. Mana tadi ni? Dah hamba.
3: Hamba.
0: Oh, fadi. Teruk teruk kaya ceng. Macam mana list? Nah, like ya? Tapi korang tu siapa tu naya na? Hello.
4: Hello, mana nak? Ada kemasai di sini kan?
0: Acha.
4: Nama saya Ang Umaran ni rasa. Oh, kami ni biar kian ni. Moha batu rasa kutum si hari tum hari ini rasa mencopai umur hari ini.
0: Dada hambai dah. Jalan tu hambai. Black ini dia hambai.